0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बिरादरानी इस्लाम, अल्हम्दुलिल्लाह हम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अपने दुरूस में बयान कर रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा

दारुलनदवा में जब जमा हुए, बड़े बड़े सरदार जमा हुए, उन्होंने कहा कि अब मशवरा करें, अब हमारे पास क्या हाल है, ये तो हजरत उमर भी मुसलमान हो गया। उन्होंने कहा ऐसा करते हैं कि आज एक नई तजवीज रखते हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। उन्होंने कहा जी वो क्या तजवीज है? उन्होंने कहा एक नई तजवीज पेश करते हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, और हमें बिल्कुल यकीन है कि इस तजवीज पे अल्लाह के नबी जो है वो मान गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आपको बुलाया गया। रुसाए कुफारे कुरैश ने कहा कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज हमने एक नया एक तरह नई तजवीज रखी है जो उम्मीद है कि आपको बड़ी पसंद आएगी, और ये रोज का जो झगड़ा है ये भी खत्म, और ऐसी तजवीज है कि आज तक हमने आपके सामने नहीं रखी, इस पे मेहरबानी करके आप बड़े ठंडे दिल से गौर करें। उसने फरमाया ठीक है, कहो क्या बात है। उन्होंने कहा कि बात यह है कि हमने अब यह फैसला कर लिया है कि आप और हम सुलह कर लेते हैं, एक दिन जो है आप हमारे खुदाओं की इबादत करें और एक दिन हम आपके खुदा की इबादत करते हैं, सुलह कर लेते, झगड़ा खत्म कर। फरफद रसूलुल्लाह ने फरमाया क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा अच्छा हजूर, अगर आपको यूं मंजूर नहीं ना, चलो ऐसा कर, एक दिन जो है आप हमारे आलिहा की ताजीम करें, इबादत करें, उन पे आपे सलाम करें, उन पे आके मसा करें, उन्हें चूमे चाटें, और आठ दिन जो है ना हम आपके खुदा की इबादत करेंगे। देखो हम आठ दिन, आप एक दिन। हजूर ने फरमाया ये भी कबूल नहीं। उन्होंने कहा अच्छा हजूर, हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं कि आप एक दिन इबादत करें, हम एक महीने तक आपके खुदा की इबादत करें। हजूर ने फरमाया ये भी कबूल नहीं। उन्होंने कहा कि अच्छा जनाब, हम इससे भी और आगे जाते हैं, आप एक दिन के लिए हमारे खुदा की इबादत करें, हम एक साल तक आपके खुदा की इबादत करेंगे, चलो मसला खत्म करो, झगड़ा तो ना हो ना। हजूर ने फरमाया बदबख्तो, तुम क्या समझ, एक दिन इबादत करो या एक घड़ी इबादत करो, बंदा तो काफिर हो गया। गैर अल्लाह की इबादत जो है वो ये तो नहीं है ना कि जैसे जैसे आजकल मुसलमान है ना जी माशाल्लाह, वो भी बाहर तबूते शाह हुसैन, एक फारसी में मुहावरा मशहूर है कि हर तबूत पे शाह हुसैन कहने के लिए हमारी कौम तैयार है, इनको हजरत हुसैन की शहादत सुनाओ ये रोने लग जाती है, इनको कहो यजीद बहुत बड़ा बहादुर था, बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर था, फिर भी खुश हो जाती। अच्छा आदमी बड़ा अच्छा था, मुंतजम था, देखो ना इतना बड़ा हादसा हो गया, कंट्रोल कैसे किया, कोई गड़बड़ की, हिलने नहीं दिया किसी को, तो मैं एक सैयद को मार के देख लो, उस पर भी हाजिर है, तारीफ करने के लिए तैयार है माशाल्लाह। इनसे कहो माशाल्लाह कि जनाब कल नमाज पढ़ेंगे, बारिश आ जी, कहेंगे बहुत अच्छी बात है, और कहेंगे जी रात अच्छी फिल्म लगी हो, कहें ठीक है जी उधर भी चले, कोई ऐसी बात नहीं, दोनों राजी रहे, अल्लाह भी राजी रहे, शैतान से भी ताल्लुक कायम रहे, सुबह को पी और शाम को तौबा, रिंद के रिंद रहे और मुसलमानी भी न गई, माशाल्लाह मुसलमान भी हैं, वो तो रात को पीते हैं ना, दिन को तो नमाज पढ़ते हैं, तो इसलिए उनको समझ। उस हुजूर ने फरमाया जालिमो क्या कह रहे हो, अल्लाह के कुरान की ये सूरत जिती ना, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदू,

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين

जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा बीबी मरियम गुस्से में आने की जरूरत नहीं है, ये तो तेरे रब का फैसला है और तेरे अल्लाह को बगैर तेरी शादी के बगैर किसी चीज के बच्चा पैदा करना मुश्किल नहीं, बड़ा आसान है। और अल्लाह तो चाहते हैं कि उसको एक निशानी बनाए अपनी कुदरत की कि कोई ये ना कहे कि अल्लाह बना तो सकता है लेकिन जब तक मियां बीवी ना हूं वो भी नहीं बना सकता। अल्लाह चाहते हैं कि मैं अपनी कुदरत के तमाम नमूने दिखा दूं, मैं चाहूं तो नूर से मलाइका पैदा कर दूं, मैं चाहूं तो नार से जिन पैदा कर दूं, मैं चाहूं तो मिट्टी से आदम पैदा कर दूं, मैं चाहूं तो आदम से हव्वा पैदा कर दूं, मैं चाहूं तो मरियम से ईसा पैदा कर दूं, यखलुकु मा यशा, मेरी मर्जी में जो चाहूं जैसे चाहूं, यही तो उसकी शान। अच्छा जी, उन्होंने कहा कमाल है तो ठीक है, और ने कहा बीबी तुम बात कहो ना कहो, कान अमरम मकजिया, ये तो अल्लाह की तकदीर का फैसला हो चुका है, अब वो तब्दील थोड़ा होता है। अब जनाब यानी हमल भी हो गया, बजा अमल भी हो गई, अब बच्ची बिचारी बैठी रो, या लैतनी मित्तु कबल हाजा व कुंतु नसियम मनसिया, रो रही है फिर भी, हालांकि जिब्रील बातें करके कह कहती हाय काश मैं तो पैदा ही ना हुई होती, कम से कम चलो ठीक है मैं बेगुनाह हूं, मेरा दामन साफ है, लेकिन कौम तो नहीं जानती हूं। जिब्रील की बात हुई तो मेरे साथ हुई है, पूरी बिरादरी के साथ तो नहीं हुई ना, बिरादरी मुझे जब आएगी तो मैं कैसे मुकाबला करूंगी। अल्लाह ने फरमाया तुम्हें मुकाबले की जरूरत नहीं है, जब कौम सामने आ जाए तुम चुप करके सिर्फ ईसा की तरफ इशारा कर दो, हम जाने हमारा ईसा अलैहिस्सलाम जाने। कौम आ गई, गुस्से में भरी हुई है, कहती या उख्ता हारून मा कान अबू किम्रा सौइन वमा कानत उम्मू की बगिया, के भाई हारून की बहन, बाद लोगों ने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम के जो भाई थे हारून उनकी बहन, ये मुराद नहीं है, बल्कि मुराद ये है कि काना रजुलन सालिहन, उस इलाके में एक बहुत बड़े आबिद गुजार थे, उनका नाम हारून था जिसकी तरफ निस्बत की गई। उनने कहा तेरा बाप अच्छा, तेरी माँ अच्छी, ये क्या है? फअशारत इलैही, अब बीबी ने इशारा किया, कालू कैफ नुकल्लिम, कई

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बिरादरान इस्लाम, मोहतरम भाइयों, अजीज नौजवानों, सीरत पाक के सिलसिले में कुछ अरसे से ये सिलसिला दुरूस जारी है और हमने सीरत मुबारका के कुछ हिस्से, कुछ अहवाल, कुछ हालात पढ़े, बयान किए और सुने। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मक्का की सरजमीन दंग हो गई तो आप ताइफ तशरीफ ले गए। ताइफ वालों ने भी इस्तकबाल के बजाय बड़ा शदीद रद्द अमल जाहिर किया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन मुबारक को जख्मी किया। सुफहाए ताइफ ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आवाजें कसे, आपके पांव मुबारक खून से भर गए। उसी आलम में फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस सरजमीन हरम मक्का मुकरमा को लौटे तो आपके लिए ये दिन जो थे बड़े शदीद हुमूम और गुमूम के दिन थे। एक तरफ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह परेशानियों का और दुखों का आलम था, आमुल हुज़्न था। मुआविनीन वफात कर गए, मुसाइदीन के पास इतनी कुव्वत और ताकत नहीं कि वह दुश्मनों का मुकाबला कर सकें और अल्लाह के नबी अल्लाह की दावत के लिए हर वक्त बेचैन हैं। अल्लाह की कुदरत अपने फैसले फरमा रही थी कि अल्लाह ने एक फैसला फरमाया कि अपने नबी के लिए इसरा और मेराज, ताकि एक तो हुजूर की शान में और ज्यादा बुलंदी हो, दूसरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्मीनान कल्ब हासिल हो और आपके गमों का बदावा हो और पूरे आलम पर ये चीजें जो हैं जब आश्कारा होंगी तो फिर उन्हें शान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म होगा। और साथ एक गुना तसल्ली थी कि मेरा मदनी, सिर्फ मक्का और ताइफ से आप घबरा रहे हैं कि ये आपका साथ नहीं दे रहे, हम तो पूरी दुनिया को, आसमानों को भी आपके मुसख़र करने वाले, ये तो छोटे से शहर है। तो अल्लाह की तकदीर ने आपके इसरा और मेराज का फैसला। अब ये बात याद रखें कि आमतौर पर हमारे यहां इंडो पाक में लफ्ज़ मेराज ही ज्यादा इस्तेमाल होता है, हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सफर मुबारक जो है इसके दो हिस्से, एक हिस्सा जो है वो इसरा है और एक हिस्सा मुबारक जो है वो मेराज है। इसरा का माना होता है सैर, और खास तौर पर वो सैर जो रात के किसी हिस्से में की जाए उसको कहते हैं इसरा। क्योंकि अरब में मुहावरात, अरब में कुछ कलिमात ऐसे होते हैं जो किसी खास वक्त के साथ ताल्लुक रखते हैं, वरना सैर का लफ्ज तो सैर है, लेकिन जब अरबी में इसरा का लफ्ज सैर के माने में, माना यह होता है कि रात की तारीकी में या रात के किसी हिस्से में जो सफर किया जाए उस पर सैर का इतलाक। इसी तरह पूरे कुरान मुकद्दस में आप नजर डालेंगे तो जहां जहां आपको लफ्ज इसरा मिलेगा, जैसे यहां पर मैं असरा

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: तो उन्होंने एक बात का अफसाना कर, भाई अगर काबे के अंदर पैदा होना दलील खिलाफत है तो काबे के अंदर तो मोहम्मद मुस्तफा भी पैदा नहीं हुए, फिर वो नबी कैसे बन गए? ये क्या बात हुई? ये कोई दलील है कि जो काबे के अंदर पैदा हो जाए सिर्फ वही खलीफा बन सकता है? तो नबुव्वत तो खिलाफत से बदरजा आला चीज है, तो फिर अल्लाह के नबी तो काबे के अंदर पैदा नहीं हुए, वो कैसे नबी बन गए? तो असल वजह क्या थी कि किताबों में तो इतनी लफ्ज था कि हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो की विलादत खाना काबा में हुई। अब उसका तर्जमा इन्होंने ये किया कि काबा शरीफ के अंदर हुई, हालांकि मुराद ये था कि हद्द हरम में हुई। अब उसी को आप देखें कुरान में कि अगर हजूर बीबी उम्मे हानी के घर में थे तो वो भी हरम मस्जिद अल हराम, अगर हुजूर हतीम में थे वो भी मस्जिद अल हराम, अगर हुजूर जमजम के कुएं के पास थे वो भी मस्जिद अल हराम। कुरान ने तो एक लफ्ज बोल के सारे अकवाल को जमा कर दिया कि ज्यादा बहस की तुम्हें क्या जरूरत है, हुजूर हरम में थे बस मस्जिद अल हराम में थे, बैत उम्मे हानी में हूँ तब भी मस्जिद अल हराम, दार अरकम में हूँ तब भी मस्जिद अल हराम है, इंद बेरे जमजम हूँ तब भी मस्जिद अल हराम है, और दाखिल अल हतीम हूँ तब भी मस्जिद अल हराम है। कुरान तो एक ऐसी जामे बात करता है कि जिसके अंदर फिर किसी सोच की, किसी बहस की, किसी अकली मुशगाफियों की बात की जरूरत ही नहीं रहती। पर मैं

कि जिन्होंने मुझे छोड़ दिया था कभी मुझ पर अमल ही नहीं। इन कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। तो बहरहाल मेरे कहने का मकसद यह था कि अगर आप ठंडे दिल से देखें तो हकीकतन ये है कि एक दावा या एक इल्म दिया ही अल्लाह के कुरान ने है। आज पूरी दुनिया एटॉमिक एनर्जी और फला फला, सबसे पहले ये किसने आइडिया दिया था, किसने ये नजरिया दिया था कि अरसला अलैहिम तैरन अबाबीर तरमीहिम बिहिजारतिन, के एक परंदा आता है उसकी चूंच में एक पत्थर है और ऊपर से डालता है और तिबाही कर देता है। उन कौमों ने रिसर्च की, सारी दुनिया आज तक उसी उरस्तु, उसी इब्ने सीना, उसी के मोहताज, सारी दुनिया आज तक। यानी आप देख लें कि आज भी इतने जदीद मशीनरी के बाद, यानी आप दावे से कह सकते हैं आप हिंदुस्तान को मुझसे ज्यादा जानते हैं, आज भी हिंदुस्तान में जो इमारतें मौजूद हैं जिनके आसार साबका मौजूद हैं, वो इतनी जदीद उलूम और मशीनरी और इतनी जदीद फरावानियों के बावजूद आज तक कहीं नहीं बन सके। यानी आज भी वो दरबुल मसल है, आज भी आप देखें अहराम मिस्र जो है वो अपनी मिसाल आप है। मुसलमानों को तो अल्लाह ने बएतबार जमान के, बएतबार मकान के, बएतबार वसाइल के, बएतबार इल्म के, यानी ऐसे ऐसी नेमतों से नवाजा है कि अब हम खुद खुदा को छोड़ दें तो फिर अल्लाह हम पर कहर नहीं करेगा तो क्या करें। अगर हम खुद खुदा को छोड़ दें और हम खुद यानी मुसलमान काफिर के सामने शर्मिंदगी महसूस करें, इतनी दुख की बात कि हमारे सामने एक काफिर आए तो हम अपने आप में कमी महसूस करें कि यार ये बहुत एडवांस कौम है, पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत आगे हैं, हम इनसे क्या बात करेंगे, जो कल तुम्हारे गुलाम थे, जिन्होंने तुमसे इल्म हासिल किया है, जिन्होंने तुम्हारी किताबें चुराई हैं, और जिन्होंने गुस्से में और जलाल में नहीं इसलिए तुम्हारी किताबें गरनाता में जला दी थी कि दरिया जो थे वो स्याही के साथ तब्दील हो गए थे कि मुसलमानों के जखीरे को क्रश कर दो, खत्म कर दो। आज भी आप देख लें जनाब हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, ठीक है, इसमें कोई शक है, आप देख लें हिंदुओं की और मुतासिब हिंदुओं की हुकूमत है, लेकिन आपका सबसे बड़ा आइटम पे काम करने वाला कौन है, फिर भी मुसलमान। आप तो क्रिकेट नहीं जीत सकते जब तक मुसलमान साथ हो, कैसी कौम है आप, क्रिकेट नहीं जीत सकते। और नखरा और ताजा रोब ये है, हाँ जुल्म करना बहादुरी नहीं होती कि मुसलमानों की बस्तियां उजाड़ दो, कहीं बम मरवा दो, कहीं कुछ कर, ये तो बहादुरी, बहादुरी तो ये होती कि इतने अरसे के बाद तुम मुसलमानों का दिल जीत लेते। बहादुरी तो तब होती कि मोहम्मद इब्न कासिम जहां गया, जब वापस जाने लगा तो लोग धाड़े मार मार कर रो रहे थे कि कहां छोड़ के हमें जा रहे, तुम क्या कर रहे हैं। उसने कहा मैं तो अपने अमीर के हुक्म का पाबंद हूं, मुझे हुक्म आ गया वापस जाओ, उसमें जा रहा हूं। जहां से मुसलमान गुजरे हैं लोग तारीखें उठा के देख रहे, लोग रोते थे कि इतने अच्छे लोग आए थे हमारे पास, कहां वापस जा रहे, क्यों जा रहे। तो अगर तुम्हारी हिंदू तहजीब में कोई काबिलियत थी, कोई कशिश थी, कोई चाशनी थी, तो इतने अरसे से तुम्हें हुकूमत करने का मौका मिला। ये तो ना होता कि आज मुसलमान सिर्फ मुसलमान नहीं, मुसलमान हूं, दलित हूं, शूद्र हूं, मां सिवाय ब्राह्मण के कौन है जो तुम पर खुश हो, तो तुम उनको क्यों नहीं अपना बना सकते। लेकिन आखिर कोई वजह तो है, तो इसलिए ये सारी चीजें जो थी कि आज हम जब वो लिफ्ट देखते हैं तो मसले समझ आते हैं कि मौला ये तो इंसानों की बनाई हुई है, तूने अपने नबी के लिए पता नहीं कितनी तेज रफ्तार सीढ़ी रखी होगी कि मेरे मदनी बस तुम बटन ऊपर खड़े हो जाओ, बस नूरानी बटन के साथ आसमानों पे हम खुद पहुंचा दें, तुम्हारे जिम्मे खड़ा होना है, वरना ये नहीं कि आप चलते रहें और सीढ़ियों पर चढ़ते रहें। हजूर फरमाते समाई दुनिया, फिर मुझे आसमान दुनिया की तरफ जब हम पहुंचे तो वहां दरवाजा बंद था, यहां से ये भी पता लगा कि आसमानों के दरवाजे हैं। ये नहीं कि जदीद फलसफी जैसे कहते हैं जी आसमान तो है ही नहीं, आसमान का कहते वजूद ही नहीं, ये क्या है, वो कहते जो तुम्हें नजर आता है ये नीलगुम फिजा फिजा है, इसके असरात हैं वो नजर आते हैं, आसमान नहीं।
یہ جھوٹے ہیں. جب اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے آسمان پیدا کیے ہیں, الذی خلق سبع سماوات طباقا, اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسمان سات بنائے ہیں طبق, اور اس کے بعد علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ پہلا آسمان جو ہے موج مکفوف, اور دوسرا آسمان جو ہے مرمرتن بیضا, اور تیسرا آسمان جو ہے وہ لوہے سے بنایا گیا, چوتھا جو ہے وہ نحاس سے بنایا گیا, پانچواں جو ہے وہ فضہ سے بنایا گیا, اور چھٹا جو ہے وہ سونے سے بنایا گیا, اور ساتواں جو ہے وہ یاقوت احمر سے بنایا گیا. ہر آسمان اپنی اپنی جنسی الگ, لیکن خدا کی شان دیکھو زمین کی جنس ایک, زمینیں بھی ساتھ ہیں. وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ, اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ زمینیں بھی اسی طرح جیسے آسمان ساتھ ہیں زمینیں بھی ساتھ ہیں, لیکن زمین کی جنس ایک ہے, زمین مختلف نہیں. یعنی ساتوں طبقات اس کے جو ہیں ان کی, اسی لیے قرآن جہاں بھی نام لے گا آپ دیکھیں کہ آسمان کا جمع کا صیغہ آئے گا, زمین کا مفرد کا صیغہ آئے گا, کیونکہ زمین وہاں مراد, الارض سے جنس الارض مراد ہو. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سبع سماوات طباقا, ایک جگہ نہیں فرمایا, کئی مقامات پہ فرمایا. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت, اللہ فرماتے ہیں نہیں دیکھتے میں نے آسمانوں کو کیسے بلند کیا ہے, کہیں فرماتے ہیں والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون, کیا آسمانوں کو ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا, آسمان, اور پھر آسمانوں میں دروازے ہیں. قرآن کہتا ہے ففتح

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: काफिर मुसलमान हो गए
1: जग में जब आए मुहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए जग में जब आए मुहम्मद इस्लाम जिंदा

0: खुद सैदा हो गए
1: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए
0: बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा
1: बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा
0: काफिर मुसलमान हो गए
1: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम

0: बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा,
1: काफिर मुसलमान हो गए।
0: जग में जब आए मोहम्मद, इस्लाम जिंदा हो गए। जग में जब आए मोहम्मद, इस्लाम जिंदा हो गए। जग में जब आए इस्लाम जिंदा,
1: इस्लाम जिंदा हो गए।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।